प्याला 10 रुपए माल ही माल मिलेगा तो भी गोल्डन कलर का माल मिलेगा 10 से 10 देखने वाले का नजर खराब हो जाएगा अस्त जी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए बोलो जी बोलो।

0: कसल भाई
1: हां पैदाले पैदाले
0: चले चले इधर चले आ भाई 21 अंदर दिया जरा भाई एक कसल
2: आ एक कचारे कचारे कचारे कचारे